0: ज्योतिष पावे सोई करावे,
1: इसके हाथ हो इतना सब कुछ ले।
0: ज्योतिष पावे सोई करे,
1: अनजानत विख्या में रचे,
0: ये जानते अपने आप बचे।

0: को रणी उपदेशे
1: भव चुका निर्भव होए वसे
0: सगल व्याध मन देखे नसे
1: इसका साथ कृपा धारी
0: आ संग जप नाम मुरारी
1: तित पाए चुके

0: मिट जाए।
1: जिस धन को चार कुंटुड़ धावे
0: सो तन हर सेवा ते पावे।
1: जिस सुख को निद बरसे मीत
0: सो सुख साधु संग परीत।
1: जिस सोभा को

तिस ही को हमारी सगल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सेवगुन सुख दियो सत्रन को बल मो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरिया स्थूला सपर कृपा दुष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै

महादेव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत नह पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पुपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल अराजा हव बैठा कहूं सिमट पयो संक्रे कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप सियम भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार आसिख संगर हो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तुजतव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हो ही दुष्ट शवाए सके न कोई एक बार जन तुम्हें संभारा

दलहु उबारी सर्व ठावर मोह सहाई दुष्ट दोह ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किरबिग सगल देहे को हरता दुष्ट दोखियन को शाय करता। श्री अस्तु जप हे दयाल्ला पूर्ण करा ग्रंथ तकल्ला मन बांचत फल पावै सोई दुखना तसे ब्यापत कोई अड़िल्ल। सुने गुं जो याहे स्वरसना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द भाव निगटना तिन्नर के रहा अजो याकी एक बार चापई को कह। चापई संबत सतरा सहस पण जय अर्ध सहसुंतीन कह जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रब वारा तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्रो पखियाने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समापतम सत शुभम सत अबजू। दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार। आप हाद राख मोहे मान क्रम बचन विचार। चौपाई मैना गणेश प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबू न त्याऊ।

तुहे अपना जान करो प्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दा जान दा हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को त्याना बहुर करो कविता बिदनाना किशन जथा मच्छर तरो चारो चूको

मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान कहो नितुड़ ध्याय हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा कालपुरख की देह मो कोटक बिशन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किथे राव सस क्रूर जरे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई बाखत नेत सुर्गवास रघुबर करा।

तवा प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल भरी लाओ लियो सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण तर सद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघव

पाएं गहे, जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं अन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत, एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहुभेद कहें हम एक ना जान्यो। श्री असपान

प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन प्रवार परियां शब्द गावन आईया शब्द ओता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो मिसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा है करता तेरा सब कुछ है जिस देहे सो बाबे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पूजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटह जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दुवास कीते काल कंटक मारिया तुरगर्म पाया तुद जिन गाओ से नाम हरके लागे कह नानक तै सुख हुआ

0: इतनी सेवा प्रवान करने जी कीर्तन कर दिया प्रभु माफी बख्शनी। आओ अगला प्रोग्राम पैसा पैसा सर्वण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवादी हाँ सत्कारयोग ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी, ज्ञानी जगतार सिंह जी अते ज्ञानी जगहार सिंह जी जिन्होंने सोदा डहरा सब तो बाद आरती कीर्तन अते कीर्तन आप संगतां नूं बड़ा रस भिन्ना कीर्तन सरवण कराया। इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हुण मैं बेनती करदा सत्कार जो भाई अगंत सिंह जी जो आप संगतां नूं कथा दे नाल जोड़नगे। आओ गुरबाणी कथा सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

परम सम्मानियो, चुक चुक अटल शवर शतर तखत दे मालक, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु रूप साध संगत जी अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ, आप सारे बड़भागी हो, धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो, अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ जो सामदे दीवाना विच सतगुरां दी पावन बाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है, वो विचार आपां सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तों पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस शब्द की आप विचार कर रहे हाँ उस शब्द के तीन पदे आप विचार चुके हाँ। सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन रसना तो उच्चारण किया होया यह शब्द है। चौथे पदे विच सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने, निरंकार मह आकार समावह। निरंकार, निरंकार कौन है? परमात्मा। निर आकार दो अक्षर नाल बनिया होया है। निरंकार मह आकार समावह। आकार की है? इस सारी सृष्टि सारियां दा आकार बना होया है, सारियां दे डींग डोल ने। पर कहन लगे मनुख, जिहड़ा मनुख गुरु दी शरण विच आके इस आकार भरे संसार नू निरंकार विच टिकावे, निरंकार विच लीन करे, भाव ये है भी मनुख दी जेड़ी वृत्ति है वो निरंकार नू छड के आकार विच मस्त रहिंदी है, आकार देखदी है, निरंकार नू नहीं देखदी।

0: सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे शब्दां दा उचारण करदे आं, अर्थ करदे आं, सतगुरु विचार करदे आं। बहुत भुलां होईयां ने महाराज जी, अनजान बच्चा समझ के बख्श देना संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी नू गुरमत विचारा राही निहाल कर रहे सन साढ़े बड़े ही सत्कारयोग पंत दे महान कथावाचक भाई पिंदरपाल सिंह जी लुधियाने वाले। उन्हां दा अज इत्थे दूजा दवान सी ते तीन दवान होर बाकी हन। सो आप सब नू नम्रता सहित बेनती है, जिस तरह आप अपने अज परिवारां समेत हाजरियां भरियां हन, इस तरह ही कल दे जो तीन दिन दे होर दवान ने अपने परिवारां समेत इस भागे समय का वध तो वध फायदा उठाओ। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। आओ हुण आनंद साहब का पाठ होगा, उपरंत अरदास, उस तो उपरंत समाप्ति होगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
2: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजिया वाधाइया, राग रतन परवार परिया, सबद गावड़े आईया, सब दो ता गावहो हरी केरा, मन जनी वसाया, कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना, सबना गलां समरथ स्वामी, सो क्यों मनहो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किच है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वस्या वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया, कर सांत सुख मन आए वस्या, जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विठो, जिस दियां एह वडे आईया, कह नानक सुनहो संतहो, शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंट कुमारिया, तुर करम पाया तुद जिन कहो, से नाम हर कै लागे, कह नानक तैस कहोवा तित कर अनहद वाजे, अनद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पै सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोय दाई दाया खेलै सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर, जिनी नाम ते आया गे मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया गे मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सगल मंदराए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए बहुखन्ना तेरी आरती, अनता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहि को, सहस मूरत नना एक तोहि, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध उचलत मोहि। सब मह जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब मह चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत इस भावे सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अंदिनो मोहे आही पियासा, कृपा जल दे नानक सारंको होए, जाते तेरे नाय वासा। रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडोत पुन वड्डा है रहाओ। साकत हर साधना जानिया, तिन अंतर हव मैं कंडा है, ज्यो ज्यो चलह चुभ दुख पाव है, जम काल सह सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण बहु खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु सोम खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वडवड्डा है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सोहेला। औद घटे दिन सरैणारे, मन गुर मिल काज सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संसे मह, तरेहो ब्रह्म ज्ञानी, जिसह जगाए पियावे एहो रस, अगत कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुरते मनह बसेरा, निज कर महल पहो सुख सहजे,

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु,

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

निष्कैया तो समझे पूरा, कहाँ बिशन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरपंग, कै पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं होत ऊहा उस गवन, करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरह। संग

पत जाए अष्टपदी दस बसुले पाछे पावे एक बस्त कान बिघोड़ गवावे एक पीना दे दस पी हरले तो मूढ़ा कहो कहा करे जस ठाकुर सिंह ना।

पौरुषालय ज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता भी खोवे पौरुष का विश्वास न होवे जिसकी वस्तस आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा मन मत है उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर्प रोहत जान अनेत बिरकी छाया स्वरंग लावे ओ बिन से ओ मन पछतावे जो दिसे सो चालन हाल पटरियो ते अंध अंधार पटाऊ से जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के राम की प्री सुखदाई कर कृपा नानका बलय लाई मिथ्या तन धन कुटम सभाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती आसु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया बेघस्ता मिथ्या ध्रुव मो अभिमान मिथ्या आप सुपर कर तुगमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीवा हर के चरण मिथ्या सरुण पर निंदा सुने मिथ्या स्पर्ध को हिरे मिथ्या नेत्र

का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बटपागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल पर जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मनमा है।

सर्वगा ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित गौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जान ब्रह्म ज्ञानी का अंत न बार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सत जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आवरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बने नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक और ताराए जवंतर नाम सर्व में पेखा भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक अपरस सगल निस्तार अष्टपदी।

राष्ट्रपति, कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भये तीर्थवासी, कई कोट भान ब्रह्मे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नवतन नाम ध्यावे नानक करते का अंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट गिरबन कठोर, कई कोट अभिग आत्म ने कोर, कई कोट पर दर्भ को हिरे, कई कोट पर दुख ना करहे, कई गुण माया सरम माहे, कई गुण प्रदेश प्रमाहे, जिद लाभो तिद रगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई गुण सिद्ध जति जोगी, कई गुण राजे रस भोगी, कई गुण पंखी सर्व उपाये, कई गुण पाथर बिरखन बजाए, कई गुण पवन पाणी बसंतर, कई गुण देश भूमंडल, कई गुण ससियर सूर नखियत्र, कई गुण देव दानव इंद्र सेरे शत्र, सगल समग्री अपना सूत धारे, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार, कई गुण राजस्थान सत, कई गुण वेद प्राण सिमरतर शास्त्र, कई गुण किए रतन संबंध, कई गुण नाना प्रकार जंद, कई गुण किए चिर जीवे, कई गुण गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई गुण जख गिनर पे साच, कई गुण भूत प्रे सूगर मिर गाच, सबते नेरा सब हूते दूर, नानक अलप तरिया भरपूर, कई गुण पाताल के वासी, कई गुण नरक सुरग निवासी, कई गुण जन्मे जीवे मरे, कई गुण बहु जूनी फिरे, कई गुण बैठत ही खाए, कई गुण काले थक पाहे, कई गुण किए तुरंत, कई गुण माया मैं चिंत, जय जय भाणा तय तय राखे नानक, सब कृष्ण प्रभु का हाथ, कई गुण भय बैरागी, राम नाम संग तिल लिव लागी, कई गुण प्रभु को खोजंदे, आत्म पार ब्रह्म लहंते, कई गुण दर्शन प्रभ व्यास, दिन को मिलो प्रभ विनाश, कई गुण मांगे सत्संग पार ब्रह्म दिन लागा रंग, जिनको आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जूत किन्नो विस्तार, कई बार बसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट किन्ने बापांत, प्रभ ते ब्रह्मा है समात, ताका अंत ना जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हो बतातम प्रकाश, कई गुण तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई गुण नाम रस पीवे अमर पय सत्सदी जीवे, कई गुण नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को सा समारे,

संग्रह दुखी सदा अपवित संग्रह दुखी किसे का नहीं मिथ संग्रह दुखी को डान लागे संग्रह दुखी को सब त्यागे संग्रह दुखी महा अहंकारी संग्रह दुखी सदा बेकारी संग्रह दुखी जन्म मरा संदगी दुखना सुख ते टरा संग्रह दुखी को ना ही ठाऊ नानक संभावेता लय मिलाए संगा दुखी अद बीते टूटा है संगा दुखी कते काज ना पहुंचे संगे दुखी को ध्यान फरमाइए संगा दुखी उजड़ पाइया संगा दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संगे दुखी की जड़ किश ना है आपन भी जापे ही खाहे संगे दुखी का वर्ण रखना नानक संभावे तलाए उभार संगा दुखी एवं बिल लाए जो जल भी हूं मछली तड़फड़ाए संगा दुखी भूखा नहीं राजे जो पावक इंद्र नहीं त्रापै संगा दुखी छुट अकेला जो बुआड़ दिन खेत माए दवेला संगा दुखी धर्म तेरा संगा दुखी सद मिथ्या कहत किरत नंदका तुरी पया नानक जो तस्भावे सोई थिया संगा दुखी बिगड़ू पे जाए संगे दुखी को दरगाह मिले सजाए संगा दुखी सदा सहकाइया संगा दुखी ना मरे ना जीवाइया संगे दुखी की पुजे ना आसा संगा दुखी उठ चले निराशा संगा दुखना त्रष्टा कोय जैसा भावे तैसा कोई होए पया कीर्तना मेटा कोय नानक जाने सच्चा सोए सब गढ़ तिस्क्यों करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार।

सो सुखम सोई असूल नह के जन्मे नह के शिमरे अपन चलत आप ही करा आवन जाम दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धार सब सृष्ट आपे आप सगल में आप अन युगत रज थाप थाप अविनाशी नाई कि खंड धारण धार्यो ब्रह्मंड अलख अपे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभा बंत सगल संसार उदरे तन मंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दूप सारन आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप है निहार उनकी सेवा सोई लागे सुनो कृपा करे बड़ भाग नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो किश करे सो प्रभु कै रंग सदा सदा बस हर संग सह सुभाय हो वै सोए करने हार पछाण सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तसमाए समाए वह सुख निधान उनु बने आए आप स्वभाव दिनो मान नानक प्रभु जन एक हो जान सलोक सर्व कला

स्वभाव प्रसन्न अष्टपति अविनाशी परम मन मेरा अखमानु की तुम प्रीत्याग तिस्ते परे नहीं किश होए सरम निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर घीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर को बेंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाऊं नानक है मन अनुराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन प्रण जाकर नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अन ध्रुव मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए कर तांके राज मैं राज योग मैं जोगी तब मैं तबीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस्पुरगा करे अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे वगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोही अपनाए सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जंदा सुनाम ध्यावे से ते गुण में जागो परमाहे जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके आसान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना फेक कर एक रंग नाना विद किन्नो विस्तार प्रभ विनाशी एक अंकार नाना चलत करे खनमाए पूरे पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीव नानक हर नाओ नाम के धारे सगरे जंद नाम के धारे खंड ब्रह्मंड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे स्वर्ण ज्ञान ध्यान नाम के धारे आकाश पाताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुरियां सब पवन नाम के संग उदरे सुन सरावन कार कृपा सपने नाम लाए नारक चौथे पद में सो जान गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरुख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरुख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तसे सब भरी सत नाम ब्रह्म का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत भजन साधु उपदेश सत जल जाके हृदय प्रवेश सत नृत बुझे जय कोय नाम जब तागी गद होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गात जिसकी सरठ सो करने हार वरना बूझ करत विचार करते कीमत ना जाने किया नानक जोत सुभावे सो वरतिया विस्मन विस्म भय विस्मा जन बुझा तस आया स्वाद प्रभ के रंग राज रहे गुरु के भजन पदार्थ लहे वे दाते तो काटन हार जाके संग तरा संसार जन का सेवक सो बट पागी जन के संग

अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत वेखन हार नाम सत सत ध्यान हार आप सत सत सबधारी आपे गुण कारी शब्द सत सत प्रभगता सुरत सत सज सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सस रूप हृदय जन मान्या करण ग्राम दिन मूल पछान्या जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान मन प्रगटाया पैते निर्भोय बसाना स्थिव जात समाहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको पे ना गहना जाई उजा

राष्ट्रपति संजनामिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवरूपाव समेत विसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कारण सो प्रभ समराथ दृढ़कर गह हो नाम अरवथ एत संचो वो भगवान संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्वरोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उड़ता में सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा बज हर की सरणी अनुकुपावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अब खदलाए सर्व निधान में हर नाम निधान जब नानक दरगे परवान मन प्रबोधो हर कह राय दय दस्तावत आवाठाए तागो बिघन न लागे गोए जागे हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाव बिन से पूर्ण आस भगत भयात मृगास तितकर जाए बसे बरासी कहो नान काटी जम्फासी तद विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो

ज्ञान के फल पाए। संगला चाल तेरे तना तुम क्या लपटामे मूर्ख मना, सुदमीत कुटम अर बनता इंते कह हो तुम कमन सराथा, राज रंग माया विस्तार इंते कह हो कमन छुटकार, असस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पासारी, जिंदी तुस बजे ना बेगाना नाम मिसार नानक पछताना, गुर की मातू ले

आप जब अबरा नाम जब बाबो संत कहत रहत कद बाबो सार पू सतर को नाव सह सुभाए नान गुण गाओ गुण गाव त्री उतर समैल बिन जाय होमे बिख फैल होए अचंद बसै सुख नाल सास गरा सर नाम संभाल छाड़ सियानम सगरी मना साध संग पामे सच धना हर पुंजी संत करो व्यवहारी हां सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको दे कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सा लाहे एक सिमर एको मन आहे एकस के गुण गाव अनंत मंतन जाप एक भगवंत।

ना जानिए सुमुंद साह सुल्तान गृह सेती माल तन कीड़ी तोल ना हो वरी जेत मन हो ना विसर है।

हम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान ससंजम नेम अनेक बसेखे वेद प्राण कतेव कुरान जमीन जुबान सुबान के पेखे पौन आहार जति जात तार सब सो विचार हजार देखे।

मुक्त पछोताइए। सत गुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरह नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगमे गोचरा तेरा अंत न पाया, अंत न पाया किने तेरा अपना आप तू जाने। जी जन सब खेल तेरा क्या को आख बखाने, आखे ता वेखे सब तू है जन जगती उपाय। कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया,

तुर करम पाया तुर जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तंस कुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वडभागी सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुगु खरोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सत्से पूरे गुरते जानी

0: अमृत प्रभ नाम
1: भगत जना के मन विश्राम रहाओ
0: प्रभ के सिमरन गर्भ ना बसे
1: प्रभ के सिमरन दुख जम नसे
0: प्रभ के सिमरन काल पर हरे
1: प्रभ के सिमरन दुश्मन डरे
0: प्रभ सिमरत कछ

0: जय प्रसाद तर ऊपर सुख बस है। जय प्रसाद पीवह शीतल जला
1: सुखदाई पवन पावक मुला
0: जय प्रसाद भोग सब रसा।

0: जय प्रसाद अश्व हस्त अश्वारी
1: मन तिस्वर को कहु नाम सारी।
0: जय प्रसाद बाग मिलख तना
1: राग प्रोई प्रभ अपने मन
0: जिनते रीमन वंत बनाई
1: उठत बैठ सत से त्याय
0: किसे त्याय जो एक लख
1: यहाँ नानक तेरी रखे।
0: जय प्रसाद।

0: संसार के संग सफल जन्म
1: सार के संग नहीं कछ काल
0: दर्शन पे तत होत निहाल
1: साध के संग के लोकत हरे
0: साध के संग नरक पर हरे।

0: कई कोर पाथर बिख निपजाए,
1: कई कोर पवन पानी बैसंतर,
0: कई कोर देश पूर मंडल,
1: कई कोर सस्यर सूर्य ने खतर,
0: कई कोर देव दारु इंद्र सब छतर,
1: सगल समग्री अपने सूत तार,
0: नानक जस जस पावे ते